पे जाके उन उसकी ऐप को अगर आप डाउनलोड करें तो ये आपको मुफ्त जो है, और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो कि न्यूट्रल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो एआई की जो ऐप है बहुत ही अच्छी है और बड़ी मालूमाती है। अच्छा, उसके बाद एक और ख़बर जो है हम देना चाहते हैं कि कई फैमिलीज़ जो हैं उनके यहाँ अंदरूनी तौर पे काफ़ी झगड़े आ रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो इंटरनेट के ऊपर वो वीडियो या फ़ोटोज़ लगा देते हैं एक दूसरे की, और उससे जो है एक तो फैमिली को प्रॉब्लम होते हैं, दूसरे यह कि उनकी फ़ोटोज़ को मिसयूज़ किया जा सकता है। तो वो लोग जो एक दूसरे के साथ बहस मुबासे में आते हैं या कोई उनका कोई झगड़ा होता है यंग लोग, तो प्लीज़ आप अपनी या उनकी कोई ऐसी वीडियो फ़ोटो बना के इंटरनेट पे नहीं डालें, क्योंकि ये मिसयूज़ भी हो सकती हैं ये जो इंटरनेट वगैरह है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे नौजवान जो है इन चीज़ों को सोचें, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके ताल्लुक मसलन एक लड़का लड़की उनके अच्छे दोस्ती थी और वो फिर उनका झगड़ा हो गया, तो बजाय इसके कि आप वो फ़ोटोज़ उनकी इंटरनेट पर डालें, आप उनके साथ बात कर सकते हैं और उस मसले को हल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इंटरनेट पे जो फ़ोटोज़ वगैरह वीडियो डालते हैं तो ये मिसयूज़ भी हो सकती हैं। अच्छा, एक और भी ख़बर है, वो एक प्रोफेसर हैं हमारे डेनिश यूनिवर्सिटी के, उन्होंने वो लोग जो गर्मियों की छुट्टियों में मुख्तलिफ जगहों पे एज ए टूरिस्ट जाते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि प्लीज़ आप हमेशा जैसे हम पहले कह रहे थे, आप एक जगह पे जाने से पहले उस जगह की मालूमात सारी इकट्ठी करें। और जब एक ये सर्वे किया है, इंग्लैंड में भी एक सर्वे किया गया यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने, और उन्होंने भी कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ख़ासतौर पर टेम्परेचर या कोई वहाँ पे मौसमियात चेंजेस हैं उसके लिए आप जो है इस चीज़ को अपने ख्याल में रखें। हाँ, एक और बात, ख़ासतौर पे वो लोग जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारी उम्र के हैं, जब वो गर्मी वाले इलाके में जाते हैं तो उससे बहुत नुकसान होता है। अभी बताया जा रहा है कि यूरोप में इस 10,000 बुज़ुर्ग लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है, जो जून में जब जो गर्मी की लहर आई थी, ये डेटा उन्होंने इकट्ठा किया है ब्रसल में। तो ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग लोग हैं, जब वो सफ़र करते हैं उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए अपनी सेहत का जब वो ऐसे इलाकों में जाते हैं। और एक अच्छी खबर डेनमार्क के हवाले से ये है कि दो सर्वे आए हैं जिसमें बताया गया है कि यूरोप में डेनिश लोग जो हैं वो उनकी उम्र भी काफ़ी बढ़ती जा रही है, इसलिए कि हमारे शहर जो ख़ास तौर पे कोपेनहेगन, वो यूरोप का सबसे क्या कहते हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का शहर है, और यहाँ पे जराइम भी बहुत कम है, कन्फ्लिक्ट कम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छा है। तो कोपेनहेगन को जो है फर्स्ट पोजीशन आई है, और उसके बारे में जब पूछा गया कि उसकी वजह क्या है, तो वो ये कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है डेनमार्क में, स्वीडन, नॉर्वे और स्कैंडिनेविया में वो सबसे अच्छी है पूरे दुनिया के ममालिक में। तो जो इंडेक्स है, कनाडा भी उसमें शामिल है, यूएसए नहीं है, लेकिन हमारी तरफ की दुनिया जो है पाकिस्तान इंडिया की तरफ वो बिल्कुल ही नीचे है। तो आखिर में सेहत के बारे में एक दो खबरें हम आपको दे देते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की है कि बुज़ुर्ग लोग जो हैं ख़ासतौर पे जो पेंशन पे चले जाते हैं, वो कहते हैं कि नॉर्वे और स्वीडन और डेनमार्क में इतनी फैसिलिटीज़ हैं बुज़ुर्ग लोगों के लिए कि वो अपनी लाइफ ना सिर्फ बढ़ जाती है बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बहुत बेहतर हो जाती है। तो मैं अपने पाकिस्तानी बुज़ुर्ग लोग जो स्कैंडिनेविया में रहते हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया करें। यहाँ पे बड़ी बुज़ुर्ग लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, सीनियर्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बड़ी है बुज़ुर्ग